ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और हमारे प्रिय नानकदारी महाराज जिन्होंने सभी को प्रेरणा देकर के उनके साथ में जितने भी सजन कार्यकर्ता जुड़ गए थे एक प्रोग्राम बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दिन जो है हमें बहुत ही हमें शक्ति देंगे, घर में सुख शांति देगा। हमारे यहाँ इस जुलूस के अनुसार अच्छी वर्षा होगी, हमारे गांव के लिए मैं शुभकामना करता हूं कि हमारे काटू नगर, चाहे छोटी काटू हो या बड़ी काटू, और भी आसपास के गांवों में सज्जन जो आए हुए हैं उन सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान और पुष्कर के बीच में एक छोटी पहाड़ी
उसको हटा रहे थे रोड पर चौड़ा करने के लिए और महाराणा प्रताप की मूर्ति वह लगाने के लिए तो थोड़ा रास्ता रोक दिया था, इसलिए वो भी समय ज्यादा लग गया। नहीं तो मैं 3 बजे ही यहाँ काठमांडू पहुंच जाता, तो मैं थोड़ा देर से आया, इसलिए मुझे खेद है कि आपको कष्ट हुआ होगा। महाप्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को खूब शक्ति भक्ति ज्ञान रिद्धि सिद्धि सुख शांति दे। सजना, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति सभी संस्कृतियों की जननी है। सबसे पहला मानव जाति हमारे तिब्बत जो कहलाता है वो हिंदुस्तान का ही अंग था, क्योंकि स्वयंभू भगवान शिव वही पहले प्रकट हुए थे। तो भारत केवल इतना ही नहीं है जो हम देख रहे हैं, उधर अपने तुर्की तक पूरा मिडिल ईस्ट और सिंगापुर और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा देश है वो भी भारत का अंग था, धीरे धीरे पानी से अलग होने जा रहा है। तो सजना, उस समय हम वही मानव है और वही एक ऋषि मुनियों के औलाद है हम सभी, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप यहूदी हो, ये सब भाग में बने हैं। सनातन धर्म आदि अनादि काल से वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म एक ही भगवान को मानते हैं जिसको आप कहते हैं ब्रह्म, और जिसको कहते हैं मालिक, सभी का मालिक वही है, चाहे उसको अल्लाह कहो चाहे उसको ब्रह्मा कहो। वही जो ईसाई लोग कहते हैं फादर और हम क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, बात एक ही है, लेकिन आदि अनादि काल से देखा जाए तो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म क्या है? मान लीजिए कि मां के गर्भ में वो गर्भ जो है वो पनप रहा है, तो सजना बच्चा मां के गर्भ में ही बुद्धा होने लगता है। कैसे? 9 महीना के बाद जो बाढ़ आता है तो 9 महीना बुद्धा तो गया, लेकिन जो जितने शरीर के अवयव हैं, अंग हैं, मस्तिष्क हैं, ये जो बनता है वो सनातन है। हम एक पौधा एक बीज को जमीन में डाल के बच्चों को प्रसाद दे प्रसाद देने लगा, आ जाओ हमारे नानक जी आएंगे सभी को प्रसाद दे रहे बच्चे सभी जाओ प्रसाद लेने जाओ। तो आप जो बारिश हुई है ये प्रसाद सनातन

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय।

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

0: ओम श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी महादेव की माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म मात पिता गुरुदेव की ओम शांति शांति शांति ही फॉर डूइंग टू आवर योगा प्रैक्टिस विच इज वेरी ग्रेट एंड एग्जैक्टली इट इज कंप्लीट इज दैट सो इन दैट सो बोथ द हैंड्स एंड नाउ एट ऑल वंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स Your legs, your, yes, seven, the right hand. Ten. Eight, sorry. Now you go.
1: Nine. Ten.
0: Wait, no. Stay. We are not going like this. Look very nice. Next. This is in the whole world about yoga in daily life for all of us, my dears. And we are in Rajasthan, in India, and it is a beautiful place. And we are all practicing very good yoga in daily life.
1: 12. Sixteen.

स्वरूप गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्तं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्ति परब्रह्म।

0: ओम शलकुर जी महादेव की जय। देवा देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranandpuriji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, s vámi mu Maheshwaranandajimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurijimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasinům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám